0: हो रहे हैं वो साफ संजय बबुआ के अंडे बनने का बाद ही हुआ कि नहीं। जब आप सच्ची सच्ची बताओ वो या तो खुद ही छलेड़ा है या इतना मनहूस को छलेड़ा उनमें घुस के हम लोगों को तंग कर रहा है। तो गंभीर बात है।
1: मुझे
2: आमे खो, आमे खो, आमे खो, आमे खो, आमे खो, आमे खो।

इस वीक के सीक्यू का। तो हमारा इस वीक का सवाल है, जो गाना आप अभी सुनेंगे उसमें आवाज किसका है? और हमारा पता, सीने सफर, केयर ऑफ HMBFM, 2 Ribbon Street, कोलकाता 16। सीने सफर, केयर ऑफ HMBFM, 2 Ribbon Street, कोलकाता 16। तो एक बार फिर इजाजत लेते हैं हम, मगर इसमें ना है कोई गम, क्योंकि लौट आएंगे हम अगले शुक्रवार इसी समय इसी दिन। सो बाय एंड टिल देन, ट्यून ऑन टू HMBFM 107 MHZ।